0: साथियों, राखी का धागा सिर्फ कलाई पर नहीं बनता, ये भाई बहन के दिलों को प्यार, विश्वास और अपनापन से जोड़ता है। बचपन की नोक झोंक से लेकर जिंदगी के संघर्षों तक साथियों, भाई बहन का साथ हर रिश्ते से अलग और खास होता है।
1: जी हाँ, आप सभी को वागर रेडियो परिवार की ओर से रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी बिल्कुल साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।

0: जैसा कि दोस्तों हमारी शुरुआत की पंक्तियों के माध्यम से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा बातचीत का विषय काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं युवाओं की आवाज कार्यक्रम में मेरी बहन मेरी दोस्त बदलते दौर में भाई बहन के रिश्ते को लेकर। जैसा कि श्रोता साथियों आज भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन का त्योहार है और इसी दौरान आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी रिश्ते को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि बदलते दौर में भाई बहन का रिश्ता किस प्रकार से मजबूत हो रहा है या फिर कहें कि बदल रहा है।
1: जी हाँ, तो ये बातें हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। साथियों आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं मेरी बहन मेरी दोस्त बदलते दौर में भाई बहन के रिश्तों को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि ये जो रिश्ता है भाई बहन का, वो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बचपन की शरारतें हैं, छोटी छोटी नोकझोंक है, एक दूसरे की शिकायतें हैं, लेकिन इन सब के पीछे छिपा है प्यार, अपनापन और विश्वास का साथ। रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी बांधने और मिठाई खिलाने का त्योहार नहीं है जागृति जी। ये उस रिश्ते को महसूस करने का अवसर है जिसमें भाई बहन एक दूसरे के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, बदलते समय के साथ रिश्तों को निभाने के तरीके भी बदले हैं। पहले भाई बहन एक ही घर में साथ बड़े होते थे, आज पढ़ाई नौकरी और करियर के कारण अलग अलग शहरों में रहते हैं।
0: जी हाँ।
1: पहले बातचीत आमने सामने होती थी, आज मोबाइल कॉल, वीडियो कॉल और मैसेजेस रिश्तों को जोड़ने का माध्यम बन गए हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या तकनीक ने दूरी बढ़ाई है या दूरियों को कम करने का नया रास्ता दिया है?
0: जी हाँ।
1: भाई बहन का रिश्ता शायद उन रिश्तों में से है जिसमें हमें दोस्त बनाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता।
0: बिल्कुल,
1: बचपन से ही हम एक दूसरे के साथ बड़े होते हैं। कभी खिलौने को लेकर लड़ाई, कभी टीवी का रिमोट, कभी खाने की चीजों को लेकर बहस और कभी माता पिता से एक दूसरे की शिकायत। ये छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर खूबसूरत यादें बन जाती हैं।
0: जी हाँ।
1: बचपन में भाई बहन एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समझ आती है कि यही व्यक्ति हमारे जीवन में कितना खास है। कई बार बहन भाई की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है, वो उसकी परेशानियों को बिना ज्यादा पूछे समझ लेती है। वही भाई भी अपनी बहन के लिए ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसके सामने वो बिना झिझक अपने मन की बात रख सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि भाई बहन का रिश्ता केवल भाई मेरी रक्षा करेगा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये रिश्ता हम एक दूसरे का साथ देंगे की भावना पर आधारित होना चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के हमारे युवा साथी पहले की तुलना में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं।
1: बिल्कुल कशिश,
0: पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं, नौकरी, व्यवसाय और अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ में कई बार परिवार के लिए समय निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कई भाई बहन अलग अलग शहरों या राज्यों में रहने लगे हैं जागृति जी। ऐसे में रक्षाबंधन पर एक दूसरे के घर पहुंच पाना भी हमेशा संभव नहीं हो पाता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज तकनीक ने रिश्तों को जोड़ने के लिए नए रास्ते दिए हैं, जैसे कि वीडियो कॉल पर राखी दिखाना, ऑनलाइन गिफ्ट भेजना, एक दूसरे को फोटो और पुराने वीडियो भेजना, बस कुछ मिनट दिल से बातचीत कर लेना। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें दूर रह रहे भाई बहन को भी करीब महसूस करा सकती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन यहाँ एक बात समझना ये भी जरूरी है दोस्तों कि मोबाइल रिश्ते का विकल्प नहीं बल्कि रिश्ते को बनाए रखने का एक माध्यम है।
1: जी हाँ।
0: अगर हम रोज सोशल मीडिया पर घंटों दूसरों से जुड़े रहें लेकिन अपने भाई बहन से दो मिनट बात करने का समय न निकाले श्रोता साथियों, तो हमें अपने रिश्तों की प्राथमिकताओं पर जरूर विचार करना चाहिए।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज की बहन केवल भाई की राखी बांधने वाली बहन नहीं है, वो अपने सपनों को पूरा करने वाली एक स्वतंत्र सोच रखने वाली युवा भी है।
0: जी जी।
1: वो पढ़ाई कर रही है, करियर बना रही है और अपने फैसले भी ले रही है और अपने भविष्य को लेकर सपने भी देख रही है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे समय में भाई का अपनी बहन के प्रति नजरिया भी बदलना होगा। बहन को केवल सुरक्षा की जरूरत नहीं होती, उसे सम्मान की, विश्वास की और प्रोत्साहन की भी जरूरत होती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, अगर बहन कोई नया कोर्स करना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है या किसी नए क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, तो भाई का काम केवल उसकी चिंता करना नहीं बल्कि उसकी बात समझना और उसका हौसला बढ़ाना भी है। और यही बात बहन पर भी लागू होती है।
0: जी जी।
1: भाई के सपने, उसकी असफलताएं और उसकी उलझने और उसके फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि युवा साथियों से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस प्रकार से बदलते दौर में भाई बहन का रिश्ता बदल चुका है, तो ऐसी ही बातें हम कार्यक्रम में आगे भी जारी रखेंगे।
1: जी हाँ।
0: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हम बात कर रहे थे भाई बहन के रिश्तों को लेकर, तो आपसे कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि रक्षाबंधन के संदर्भ में अक्सर रक्षा शब्द को केवल भाई द्वारा बहन की सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है कशिश।
1: जी हाँ।
0: लेकिन आज के समय में हमें इस सोच को थोड़ा व्यापक बनाने की जरूरत है। रक्षा का अर्थ है श्रोताओं, एक दूसरे की गरिमा, सम्मान, सपनों और भावनाओं की रक्षा करना। अगर बहन किसी परेशानी में है तो भाई उसके साथ खड़ा हो, अगर भाई असफलता से परेशान हो तो बहन उसका हौसला बढ़ाए, अगर दोनों के बीच कोई मतभेद है तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी में हमेशा एक व्यक्ति मजबूत और दूसरा कमजोर नहीं होता।
1: बिल्कुल।
0: परिस्थितियों के अनुसार कभी भाई को बहन के सहारे की जरूरत पड़ सकती है और कभी बहन को भाई के।
1: जी जी।
0: यही तो रिश्ते की खूबसूरती है, साथ हमेशा बराबरी से दिया जाता है।
1: बिल्कुल। साथी दोस्तों, नोकझोंक भी रिश्ते का हिस्सा है, यानी कि भाई बहन के बीच छोटी मोटी लड़ाई होना बिल्कुल सामान्य है। जागृति जी, कभी किसी बात पर बहस हो जाती है तो कभी विचार अलग हो जाते हैं दोस्तों, तो कभी एक दूसरे की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जरूरी यह है साथियों कि नाराजगी को रिश्ते से बड़ा न बनने दिया जाए। आज के युवाओं के सामने सोशल मीडिया की दुनिया भी है, जहां छोटी सी बात पर लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं जागृति जी।
0: बिल्कुल।
1: या फिर बातचीत बंद कर देते हैं। ऐसे में भाई बहन के रिश्ते में ऐसा करने के बजाय बातचीत और समझदारी को जगह देना श्रोता साथियों ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बातचीत वर्षों की नाराजगी खत्म कर सकती है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज युवा अपने करियर को लेकर गंभीर है, कोई पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रहा है, कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई नौकरी के लिए घर से दूर है और कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है। ऐसे समय में परिवार का भावनात्मक सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई अपनी बहन से कह सकता है कि तुम अपने सपनों के लिए मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बहन भी भाई से कह सकती है कि असफलता से डरना मत, कोशिश करते रहो। कई बार हमें समाधान नहीं चाहिए होता, बस कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो कह सके मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाई बहन एक दूसरे के लिए वही भरोसेमंद व्यक्ति बन सकते हैं।
1: बिल्कुल। साथी श्रोता साथियों, आज हमारे फोन में सैकड़ों कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन जीवन के मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े होने वाले लोग बहुत कम होते हैं जागृति जी।
0: जी हाँ।
1: इसलिए युवाओं को ये समझना होगा कि ऑनलाइन कनेक्शन और वास्तविक रिश्ता एक जैसी चीजें नहीं होती। भाई बहन के रिश्ते को केवल रक्षाबंधन की एक फोटो या सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित न रखें दोस्तों, कभी बिना किसी खास वजह के फोन भी कर लें और पूछें कि कैसी हो, एक दूसरे के काम के बारे में जानें, पुरानी यादों को साझा करें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ खड़े भी रहें, क्योंकि रिश्ते बड़े बड़े शब्दों से नहीं जागृति जी, बल्कि छोटी छोटी कोशिशों से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज भाई और बहन दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए रिश्ते में अधिकार के साथ साथ सम्मान भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, भाई को बहन की पसंद, विचार और फैसलों का सम्मान करना होगा, बहन को भी भाई के विचारों और उसकी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना होगा।
1: जी जी।
0: एक दूसरे पर अपनी इच्छाएं थोपने के बजाय बातचीत करनी होगी, क्योंकि प्यार का अर्थ किसी की जिंदगी को नियंत्रित करना नहीं बल्कि उसे समझना और उसका सम्मान करना भी है।
1: बिल्कुल।
0: राखी का धागा बहुत छोटा होता है लेकिन इसके पीछे जुड़ी भावनाएं बहुत बड़ी होती है। ये धागा हमें याद दिलाता है कि चाहे जिंदगी हमें कितनी भी दूर क्यों न ले जाए, हमारे रिश्तों की जड़ें हमारे अपने लोगों से जुड़ी रहती है।
1: बिल्कुल।
0: रक्षाबंधन हमें ये अवसर देता है श्रोताओं कि हम अपने भाई या बहन से सिर्फ राखी बंधवाने की रस्म न निभाए बल्कि उनसे एक वादा भी करें। हम एक दूसरे के सपनों का सम्मान करें, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दें, मतभेद होंगे तो बातचीत से सुलझाएंगे, दूरी होगी लेकिन रिश्तों में दूरी नहीं आने देंगे। यही रक्षाबंधन की भावनाओं को आज के समय में और सार्थक बना सकती है।
1: बिल्कुल। युवा साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि जिंदगी की दौड़ में हम कई बार करियर, सफलता और भविष्य के पीछे भागते हुए अपने रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं दोस्तों।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन आपको याद रखना है कि सफलता की खुशी तब और बढ़ जाती है जब उसे बांटने वाला कोई अपना हो। आपकी बहन आपकी दोस्त बन सकती है, आपका भाई आपका साथी बन सकता है। इसके लिए जरूरी है साथियों के रिश्ते में विश्वास, सम्मान, संवाद और अपनापन बना रहे। इस रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने की परंपरा को आप न निभाएं, अपने भाई या बहन को समय दें, उनकी बातें सुने, उनके सपनों के लिए एक दूसरे का हौसला बने, क्योंकि जागृति जी भाई बहन का रिश्ता किसी एक दिन का रिश्ता नहीं होता, यह बचपन की यादों से शुरू होकर जिंदगी के हर पड़ाव तक साथ चलने वाला रिश्ता होता है।
0: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आज के युवाओं की आवाज कार्यक्रम के माध्यम से रक्षाबंधन विशेष कार्यक्रम से यही संदेश आपको बताना चाह रहे हैं कि समय बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, रिश्तों को निभाने के तरीके भी बदल रहे हैं, लेकिन सच्चे रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। राखी का धागा हमें सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान, बराबरी और साथ का संदेश देता है। तो साथियों, इस रक्षाबंधन अपने भाई या बहन से एक बार दिल से जरूर कहिए, रिश्ते चाहे जैसे भी हो, दूरी चाहे जितनी हो, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे।
1: बिल्कुल।
0: इसी खूबसूरत संदेश के साथ श्रोता साथियों, हम आज के इस कार्यक्रम से आपसे विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुनवा देते हैं भाई बहनों से जुड़ा ये प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो युवा साथियों बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इस गीत के साथ ही फिर से आप सभी को एक बार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपड़ो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किमकी घेरे कोई आपड़ो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े नी कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो भी अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह।
4: होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
5: होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, हम जब भी हाजिर होते हैं कार्यक्रम में तो हमारी आपसे बातचीत का एक नया विषय होता है। तो श्रोता साथियों, आज भी हम कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसी ही प्यारे से विषय को लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ श्रोता साथियों, आज का हमारा विषय है रक्षाबंधन को लेकर। श्रोता साथियों, राखी का त्योहार आते ही बचपन की कितनी सारी बातें याद आने लगती हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधना, मिठाई खिलाना, उपहार के लिए जिद करना और फिर छोटी सी बात पर भाई बहन की प्यारी सी नोकझोंक। लेकिन दोस्तों, राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, इस छोटे से धागे में बहुत सारा प्यार छुपा होता है। एक दूसरे के साथ देने का भरोसा, मुश्किल समय में साथ खड़े रहने का वादा और श्रोता साथियों, सबसे जरूरी बात, अपने रिश्तों को हमेशा प्यार और सम्मान से निभाने की बात। तो श्रोता साथियों, इस विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से हमारे आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो श्रोता साथियों, उसी दस्तूर को निभाते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, मैंने आपसे कहा था कि रक्षाबंधन का जो धागा होता है वो सिर्फ धागा नहीं है। हम देखते हैं कि इस छोटे से धागे में बहुत सारा प्यार छिपा होता है, एक दूसरे का साथ देने का भरोसा होता है, मुश्किल समय में साथ खड़े रहने का वादा होता है। और श्रोता साथियों, सबसे जरूरी बात अपने रिश्तों को हमेशा प्यार और सम्मान से निभाने की बात होती है। तो श्रोता साथियों, इसी विषय पर आधारित सुनते हैं एक प्यारा सा नाटक।
1: अरे मीरा, तुम यहाँ? मैं तो राखियां लेने आई थी और इतनी सारी राखियां देखकर खुद ही उलझ गई हूँ।
2: क्यों कविता, क्या हुआ? एक राखी खरीदने में इतना सोचना?
1: अरे एक होती तो खरीद लेती, यहाँ तो इतनी तरह की राखियां हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सी लूं। मोती वाली लूं कि फूलों वाली लूं कि बच्चों वाली। और एक तो ऐसी थी कि देखकर लगा कि राखी है या पूरा सजावट का सामान।
2: हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन राखी कितनी सुंदर है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि उसके पीछे भावना कितनी सुंदर होती है।
1: सही कह रही हो, राखी देखते ही मुझे अपना बचपन याद आ गया।
2: हाँ, तुम्हारा भाई राखी बनवाते समय परेशान करता था, है ना?
1: परेशान? अरे पूछो मत, पहले राखी बनवाने से भागता था, फिर मिठाई के लिए सबसे आगे रहता था।
2: बिल्कुल सही कह रही हो, यही तो भाई बहन का रिश्ता है, थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी शिकायत और ढेर सारा प्यार।
1: लेकिन मीरा, आजकल बहुत कुछ बदल गया है, भाई बहन अलग अलग शहरों में रहते हैं, कई बार राखी पर मिलना भी नहीं हो पाता।
2: बिल्कुल तुमने सही कहा, मिलना जरूरी है लेकिन हर बार सामने होना ही जरूरी नहीं है ना। एक फोन, एक संदेश, एक वीडियो कॉल, ये भी तो रिश्ते को गर्माहट दे सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि रिश्ता सिर्फ राखी वाले दिन ही याद न आए।
1: क्या मतलब?
2: अगर बहन किसी परेशानी में है तो भाई को सिर्फ रक्षाबंधन पर नहीं, उस समय भी साथ खड़ा होना चाहिए। और भाई किसी परेशानी में हो तो बहन भी उसका हाथ थामे रखे।
1: यानी रक्षा सिर्फ भाई की जिम्मेदारी नहीं?
2: बिल्कुल नहीं कविता, रिश्ते में सुरक्षा का मतलब है कि एक दूसरे के लिए भरोसे का सहारा भी हम बने।
1: अच्छा, मुझे एक बात अच्छी लगती है कि आज की बहनें भी अपने सपनों को लेकर बहुत जागरूक हैं।
2: हाँ वो तो है, और होना भी चाहिए। राखी का मतलब ये नहीं है कि बहन कमजोर है और भाई हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। बहन भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अपने फैसले ले सकती है और अपने परिवार के लिए मजबूत सहारा बन सकती है।
1: और भाई का असली प्यार शायद तब दिखाई देता है जब वह बहन के फैसलों और सपनों का सम्मान करे।
2: बिल्कुल, जैसे कि अगर बहन पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, कोई काम करना चाहती है या अपने जीवन में कुछ बनना चाहती है, तो उसका हौसला बढ़ाना भी भाई के प्यार का एक हिस्सा है।
1: हाँ सही कह रही हो तुम, और बहन को भी भाई के सपनों को समझना चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल, और यही तो बराबरी वाला रिश्ता है।
1: मीरा, इस बार मैंने सोचा है कि बाजार से महंगी राखी खरीदने के बजाय अपने हाथ से ही राखी बनाऊंगी।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है।
1: घर में पड़े रंगीन धागे, मोती और कपड़े के छोटे टुकड़े हैं, उससे ही राखी बनाऊंगी।
2: हाँ, और उसके साथ में एक छोटा सा संदेश भी लिखना।
1: क्या?
2: यही कि रिश्ता सिर्फ आज नहीं, हर दिन निभाएंगे।
1: बहुत सुंदर, और इस बार मैं भाई को सिर्फ उपहार नहीं दूंगी, उसे कहूंगी कि चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो जाए, हम एक दूसरे से बात करना नहीं छोड़ेंगे।
2: बिल्कुल कविता, और यही तो राखी की सच्ची भावना है।
1: मेरा एक बात बताओ, अगर भाई बहन में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाए
2: तो राखी उससे भी बड़ा मौका हो सकती है। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत सालों की दूरी कम कर देती है, जरूरी नहीं है कि हर बार कोई बड़ा उपहार ही दिया जाए। कभी बस इतना कह देना कि अगर मेरी किसी बात से तुम्हें दुख हुआ तो मुझे माफ कर देना, और सामने वाला ये कह दे चलो पुरानी बात छोड़ते हैं, यही तो रिश्ते की खूबसूरती है।
1: सच कहूँ तो त्योहार तभी अच्छा लगता है जब घर में सिर्फ मिठाई नहीं मन में भी मिठास हो।
2: बिल्कुल सही कहा कविता तुमने, और वो देखो वहाँ पर राखी बनाने का सामान पड़ा है, तुम्हें घर पर राखी बनानी है ना?
1: बनानी है।
2: तो जाओ जल्दी वो सामान ले लो और फिर घर जाके राखी बना लेना।
1: बिल्कुल, चलो चलते हैं।
2: चलो।
0: तो श्रोता साथियों, आज के हमारे इस छोटे से नाटक से बस एक इतनी सी बात समझ आती है कि रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी बांधने का त्योहार नहीं है, यह श्रोता साथियों उस रिश्ते को याद करने का दिन ही जो बचपन की शरारतों से लेकर जिंदगी में मुश्किल समय तक हमारे साथ चलता है। भाई बहन का रिश्ता कभी प्यार भरी नोकझोंक ही, कभी रूठना मनाना, तो श्रोता साथियों कभी बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ जाना। श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि जिंदगी कितनी भी बदल जाए, दूरियां कितनी भी बढ़ जाए, रिश्तों में प्यार और अपनापन बना रहे यही सबसे जरूरी है। इस रक्षाबंधन श्रोता साथियों महंगी राखी या बड़े उपहार से ज्यादा अपने भाई बहन को अपना थोड़ा सा समय दीजिए, एक फोन कीजिए, हाल पूछिए, पुरानी नाराजगी को भूलकर बात कीजिए, क्योंकि श्रोता साथियों कई बार रिश्तों को जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती है, बस एक छोटी सी बात भी काफी होती है, जिससे कि श्रोता साथियों आप बोल सकते हैं उनसे आप कैसे हो, अपना ख्याल रखना, या फिर श्रोता साथियों कोई परेशानी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बातें हम देखते हैं कि हमारे रिश्तों में जो नाराजगी होती है उन्हें कम कर देती है। याद रखिए श्रोता साथियों कि राखी कलाई पर बंधती है लेकिन उसका प्यार हमारे दिल में रहता है। धागा साथियों भले ही छोटा हो लेकिन इसमें छिपा रिश्ता बहुत बड़ा होता है। तो श्रोता साथियों इस रक्षाबंधन राखी बांधिए, मिठाई खिलाइए, खुशियां मनाइए और साथ ही साथियों अपने रिश्तों को थोड़ा और मजबूत बनाइए, क्योंकि साथियों त्योहार एक दिन आता है लेकिन अपने लोग और उनके साथ का एहसास जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। इसी प्यारे से संदेश के साथ श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही वो आप सभी को जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

भी प्रेम ने भरोसा दकीस मजबूत थाय है। तो आज आपणे कार्यक्रम में इस वाते करंगा कि आ राखड़ी नो त्योहार नो हूँ महत्व है ने हर ते आना त्योहार ने आपणा ने हमसवो होगा। भाई बुनू आपणी मिट्टी आपणो परिवार ने आपणो जे रिश्तो है ये आपणा ने बनावी ने राखवो होगा। तो आना विषय माते घणा कनी वाते थाईगा पण कार्यक्रम शुरू कर एनी पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपणी वाते। तो भाई बुनू आप हमरते रहेजो आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: जागृति बूंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बूंद हूँ था का
0: अरे जागृति बूंद आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएगा खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बूंद एटले मन का कहे की पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बूंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बूंद आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा की नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बूंद आपड़े भाई बूंदो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: भाई बोनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं रिश्तों में संवाद, परिवार और समाज की मजबूती को लेकर।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, रिश्ते टूटते हमेशा बड़े झगड़ों से नहीं है, कई बार वे छोटी छोटी बातों के अनकहे रह जाने से कमजोर हो जाते हैं। एक परिवार में साथ बैठने वाले लोग अगर एक दूसरे से बात करना बंद कर दे तो घर में लोग तो रहते हैं लेकिन अपनापन कम होने लगता है। वहीं जब संवाद के दरवाजे खुले रहते हैं तो गलतफहमियां दूर होती है, विश्वास बढ़ता है और रिश्तों में मजबूती आती है। इसलिए कहा जा सकता है कि जहाँ संवाद जीवित है वहाँ रिश्ते भी जीवंत है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथी सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों में संवाद, परिवार और समाज की मजबूती को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, हम कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बात छोटी हो या बड़ी, रिश्तों को बचाने के लिए संवाद का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि संवाद केवल बातचीत नहीं बल्कि दिलों के बीच बना वो पुल है जो परिवार को जोड़ता है और समाज को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि रिश्ते टूटते हमेशा बड़े झगड़ों से नहीं है, कई बार वे छोटी छोटी बातों के अनकहे रह जाने से कमजोर हो जाते हैं। श्रोता साथियों, एक ही परिवार में रहने वाले लोग यदि एक दूसरे से बात करना बंद कर दें तो घर में लोग तो रहते हैं लेकिन अपनापन धीरे धीरे कम होने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके विपरीत जब बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं तो गलतफहमियां दूर होती हैं, विश्वास बढ़ता है और रिश्तों में मजबूती आती है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ संवाद जीवित रहता है वहाँ रिश्ते भी जीवित रहते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं और हम अकेले न तो अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त कर सकते हैं और न ही समाज में सार्थक जीवन जी सकते हैं।
1: जी जी।
0: जन्म से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमें परिवार, मित्र, पड़ोसी और समाज के अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने ही पड़ते हैं और इन संबंधों को मजबूत बनाने में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रोताओं,
1: बिल्कुल,
0: संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं होता, संवाद का वास्तविक अर्थ है अपनी बात कहना, दूसरों की बात सुनना, भावनाओं को समझना और विचारों का सम्मान करना। जब दो व्यक्ति बिना डर के झिझक के एक दूसरे से अपनी बात साझा करते हैं तो उनके बीच विश्वास पैदा होता है और यही विश्वास किसी भी मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला है। बच्चा सबसे पहले परिवार से बोलता है, व्यवहार करना, दूसरों का सम्मान करना और भावनाओं को समझना सीखता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए परिवार में संवाद का वातावरण होना बहुत जरूरी है। आज व्यस्त जीवन शैली के कारण हम देखते हैं जागृति जी कि परिवार के सदस्यों के पास एक दूसरे के लिए समय कम होता जा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: माता पिता अपने काम में व्यस्त हैं, बच्चे पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों में व्यस्त हैं और खाली समय का बड़ा हिस्सा मोबाइल और इंटरनेट पर बीत जाता है। ऐसे में श्रोता साथियों, परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से दूर हो सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: यदि परिवार में प्रतिदिन कुछ समय एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत की जाए, दिन भर की बातें श्रोता साथियों साझा की जाए और एक दूसरे की समस्याएं सुनी जाए तो रिश्तों में अपनापन बना रहता है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि परिवार में संवाद का बहुत महत्व है और परिवार में बच्चे भी आते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के साथ संवाद का महत्व विशेष रूप से अधिक है। बच्चों को केवल ये बताना पर्याप्त नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: ये भी जरूरी है कि उनसे पूछा जाए कि वे क्या सोचते हैं, उन्हें किस बात की परेशानी है और उनके मन में कौन से सवाल हैं। जब बच्चे महसूस करते हैं कि परिवार उनकी बात सुनता है तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। अब वे अपनी परेशानियां छिपाने के बजाय माता पिता या परिवार के किसी विश्वसनीय सदस्य से साझा कर पाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को डांटने के बजाय समझाने की संस्कृति परिवार में संवाद को मजबूत करती है। अंजलि, जहाँ सवाल पूछने की आजादी होती है वहाँ सीखने और समझने की संभावनाएं भी अधिक होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ बात आती है माता पिता और बच्चों के बीच पीढ़ियों का अंतर।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, कई बार माता पिता और बच्चों के विचारों में अंतर होता है, यह स्वाभाविक है क्योंकि दोनों अलग अलग समय और परिस्थितियों में बड़े हुए हैं। नई पीढ़ी तकनीक और बदलते सामाजिक वातावरण के साथ आगे बढ़ रही है जबकि माता पिता के अनुभव अलग हैं। इस अंतर को श्रोता साथियों संघर्ष बनाने के बजाय संवाद का अवसर बनाया जाना चाहिए। माता पिता बच्चों की नई सोच को समझें और बच्चे माता पिता के अनुभव का सम्मान करें। दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं क्योंकि पीढ़ियों के बीच दूरी उम्र से नहीं संवाद की कमी से बढ़ती है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं रिश्तों में संवाद किस तरह से जरूरी है, तो ये बातें निरंतर बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि जहाँ संवाद होता है वहाँ लोग अपनी समस्याओं को छिपाते नहीं बल्कि साझा करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब समस्या सामने आती है तो समाधान खोजने की संभावनाएं भी बढ़ती है। गांव की बैठक हो या परिवार की चर्चा, विद्यालय हो या सामाजिक संगठन, हर जगह संवाद सहयोग का आधार बन सकता है। एक मजबूत समाज वही है श्रोता साथियों, जहां लोग अपनी बात कहने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की बात समझने के लिए भी तैयार हों।
1: बिल्कुल।
0: संवाद में शब्दों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक छोटा सा कठोर शब्द सामने वाले को लंबे समय तक दुखी कर सकता है, जबकि प्यार और सम्मान से कही गई बात मन को छू सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, बातचीत करते समय क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी समस्या पर चर्चा करते हुए व्यक्ति पर नहीं समस्या पर ध्यान करना चाहिए। तुम हमेशा गलत हो कहने की बजाय इस समस्या को हम मिलकर कैसे ठीक कर सकते हैं कहना संवाद को सकारात्मक दिशा देता है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसलिए हर परिवार और हर समाज में समस्या आती है। समस्या होना असामान्य नहीं श्रोताओं, लेकिन समस्या को लेकर बातचीत न करना समस्या को और भी बड़ा बना सकता है। अगर किसी रिश्ते में दूरी महसूस हो रही है तो पहल करने में संकोच नहीं करना चाहिए। पहला कदम छोटा हो सकता है

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: बारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, भाई बहन का साथ निभाएं, मन की हर उलझन दूर भगाएं, मन की बात छुपाएं नहीं, अपनों से कुछ छिपाएं नहीं। भाई बहन बने एक दूजे की ताकत, खुशहाल रहे मन और रिश्तों की आहट।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ श्रोता साथियों, आप सभी को वाक रेडियो परिवार की ओर से रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM पर, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर,
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल।
0: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। लेकर हाजिर हो चुके हैं श्रोता साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम की जो शुरुआती चंद पंक्तियां रही थी और जो शुभकामनाएं हमने हमारे श्रोता साथियों को दी, उसी से उन्हें पता चल गया होगा कि आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं भाई बहन के रिश्ते के साथ स्वास्थ्य को लेकर। श्रोता साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रिश्ते की जो बचपन की शरारतों से शुरू होकर जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारे साथ चलता है, वो है भाई बहन का रिश्ता। जी हाँ।

0: दोस्तों, कभी भाई की छोटी सी बात पर बहन नाराज हो जाती है तो कभी बहन की डांट भाई को अच्छी नहीं लगती। कभी दोनों एक दूसरे की शिकायत करते हैं तो कभी बिना बताए एक दूसरे की परेशानी भी समझ लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब मन उदास हो तो क्या हम अपने भाई या बहन से अपनी बात कह सकते हैं? जब भाई किसी चिंता में हो तो क्या बहन उसके चेहरे से परेशानी पहचान सकती है? जब बहन अपने सपनों, पढ़ाई, नौकरी या परिवार की चिंता में परेशान हो तो क्या भाई उसका हौसला बढ़ा सकता है? और सबसे जरूरी सवाल कि क्या हमारा भाई बहन का रिश्ता सिर्फ त्योहार के प्यार जताने तक सीमित है या हम एक दूसरे के मानसिक स्वास्थ्य का भी सहारा बन सकते हैं? तो आज हमारा कार्यक्रम का विषय है भाई बहन का प्यार और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे का सहारा कैसे बने।
1: जी हाँ अंजलि जी, इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
0: बिल्कुल।
1: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं भाई बहन का प्यार और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे का सहारा कैसे बने।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि भाई बहन का रिश्ता हमारे जीवन का सबसे खास रिश्तों में से एक है। यह रिश्ता श्रोता साथियों केवल खून का रिश्ता नहीं होता है, बल्कि इसमें प्यार, विश्वास, अपनापन, दोस्ती, चिंता और एक दूसरे का साथ शामिल होता है। बचपन में श्रोता साथियों भाई बहन एक साथ खेलते, लड़ते, एक दूसरे की शिकायत करते और फिर कुछ समय के बाद साथ बैठकर हंसने लगते हैं। यही छोटी छोटी बातें अंजलि जी हम देखते हैं कि आगे चलकर हमारे जीवन की खूबसूरत यादें बन जाती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, भाई बहन का रिश्ता हमारे जीवन के सबसे पुराने रिश्तों में से एक होता है। बचपन में साथ खेलना, एक दूसरे से चीजें छीनना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना और फिर कुछ ही देर बाद साथ बैठ जाना, ये सब इस रिश्ते की खूबसूरत यादें होती हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। पढ़ाई, रोजगार, शादी, परिवार, आर्थिक परेशानी, भविष्य की चिंता और सामाजिक अपेक्षाएं मन पर असर डाल सकती हैं। ऐसे समय में अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके सामने हम बिना डर अपनी बात कह सकें, तो मन का बोझ काफी कम हो सकता है। भाई या बहन हमेशा समस्या का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन कई बार किसी की बात ध्यान से सुन लेना ही बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब श्रोता साथियों केवल मानसिक बीमारी का न होना ही नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझ सके, तनाव से निपट सके, दूसरों से जुड़ा महसूस करे और जरूरत पड़ने पर मदद मांग सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई बहन का रिश्ता केवल बचपन की याद नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा हुआ है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हम अक्सर स्वास्थ्य की बात शारीरिक स्वास्थ्य से मान लेते हैं। हम पौष्टिक भोजन, व्यायाम, साफ सफाई और बीमारियों से बचाव की बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, स्वास्थ्य का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो मानसिक स्वास्थ्य भी है। मन खुश हो, शांत हो और साथ ही श्रोता साथियों व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है, तो हम देखते हैं कि उसके जीवन का तनाव, अकेलापन, चिंता और मन की बातें हैं वो किसी से साझा करे तो उसके अंदर की परेशानी ही वो काफी हद तक कम हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों परिवार और खासकर भाई बहन एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बन सकते हैं। एक छोटा सा प्यार भरा शब्द, ध्यान से सुनी गई बात, मुश्किल समय में दिया गया साथ, यही एहसास दिलाता है श्रोता साथियों कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी के मन को बहुत बड़ी राहत दे सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, भाई बहन का प्यार केवल राखी बांधने, त्योहार मनाने या एक दूसरे को उपहार देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्यार का असली अर्थ है एक दूसरे की बात सुनना, भावनाओं का मजाक न उड़ाना, परेशानी में साथ खड़ा होना, असफलता के समय हिम्मत देना, तुलना के बजाय प्रोत्साहित करना, गलती होने पर अपमान नहीं समझदारी से बात करना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ या परिवार के किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लेने के लिए कहना। कई बार हम अपने भाई या बहन को देखकर सोच लेते हैं कि वह तो मजबूत है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, लेकिन याद रखिए कि जो व्यक्ति बाहर से मजबूत दिखाई देता है उसके मन में परेशानी भी हो सकती है। इसलिए कभी कभी सिर्फ इतना पूछना भी जरूरी है कि तुम सच में ठीक हो, और जब वह जवाब दे तो उसकी पूरी बात सुनना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्यार का मतलब केवल मैं तेरे साथ हूँ कहना नहीं होता है, प्यार का मतलब होता है पूरे तरीके से साथ निभाना।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, अब यही बात आती है मानसिक परेशानी को पहचानना क्यों जरूरी है। श्रोता साथियों, मानसिक परेशानी हमेशा सीधे शब्दों में दिखाई नहीं देती। कई बार व्यक्ति कहता ही नहीं कि वह परेशान है, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगता है, जिससे पहले बहुत बातचीत करने वाला व्यक्ति अचानक चुप रहने लगे, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति लगातार उदास दिखाई दे, पढ़ाई या काम में मन न लगे, छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आने लगे, लोगों से मिलने जुलने से बचने लगे, बार बार खुद को असफल या बेकार समझने लगे, नींद या रोजमर्रा की दिनचर्या में बड़ा बदलाव दिखाई दे, भविष्य को लेकर बहुत अधिक निराशा व्यक्त करे, अपने परेशानियों को किसी से साझा करना बंद कर दे। श्रोता साथियों, इनमें से किसी एक संकेत का मतलब यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन अगर ऐसे बदलाव लगातार बने रहे और व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने लगे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में भाई या बहन कह सकते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए हूँ।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, हमारे समाज में अक्सर भाई बहनों की तुलना की जाती है। देखो, तुम्हारा भाई कितना अच्छा पढ़ता है, तुम्हारी बहन ने तो नौकरी कर ली है, तुम अभी तक क्या कर रहे हो, उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं। ऐसी बातें कभी कभी सामान्य लग सकती हैं श्रोता साथियों, लेकिन कई बार तुलना व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए भाई बहन को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। अगर बहन किसी परीक्षा में असफल हो जाए तो भाई यह कह सकता है कि एक परीक्षा तुम्हारी पूरी क्षमता तय नहीं करती, अगली बार हम मिलकर तैयारी करेंगे।
1: जी हाँ।
0: अगर भाई नौकरी में असफल हो जाए तो बहन कह सकती है कि अभी सफलता नहीं मिली है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सफल नहीं हो सकते।

0: जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

0: साथियों, राखी का धागा सिर्फ कलाई पर नहीं बनता, ये भाई बहन के दिलों को प्यार, विश्वास और अपनापन से जोड़ता है। बचपन की नोक झोंक से लेकर जिंदगी के संघर्षों तक साथियों, भाई बहन का साथ हर रिश्ते से अलग और खास होता है।
1: जी हाँ, आप सभी को वागर रेडियो परिवार की ओर से रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी बिल्कुल साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि दोस्तों हमारी शुरुआत की पंक्तियों के माध्यम से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा बातचीत का विषय काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं युवाओं की आवाज कार्यक्रम में मेरी बहन मेरी दोस्त, बदलते दौर में भाई बहन के रिश्ते को लेकर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन का त्योहार है और इसी दौरान आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी रिश्ते को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि बदलते दौर में भाई बहन का रिश्ता किस प्रकार से मजबूत हो रहा है या फिर कहें कि बदल रहा है।
1: जी हाँ, तो ये बातें हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। साथियों आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं मेरी बहन मेरी दोस्त बदलते दौर में भाई बहन के रिश्तों को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि श्रोता साथियों हम सभी जानते हैं कि ये जो रिश्ता है भाई बहन का, वो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बचपन की शरारतें हैं, छोटी छोटी नोकझोंक है, एक दूसरे की शिकायतें हैं, लेकिन इन सब के पीछे छिपा है प्यार, अपनापन और विश्वास का साथ। रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी बांधने और मिठाई खिलाने का त्योहार नहीं है जागृति जी, ये उस रिश्ते को महसूस करने का अवसर है जिसमें भाई बहन एक दूसरे के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, बदलते समय के साथ रिश्तों को निभाने के तरीके भी बदले हैं। पहले भाई बहन एक ही घर में साथ बड़े होते थे, आज पढ़ाई नौकरी और करियर के कारण अलग अलग शहरों में रहते हैं।
0: जी हाँ।
1: पहले बातचीत आमने सामने होती थी, आज मोबाइल कॉल, वीडियो कॉल और मैसेजेस रिश्तों को जोड़ने का माध्यम बन गए हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या तकनीक ने दूरी बढ़ाई है या दूरियों को कम करने का नया रास्ता दिया है?
0: जी हाँ।
1: भाई बहन का रिश्ता शायद उन रिश्तों में से है जिसमें हमें दोस्त बनाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता।
0: बिल्कुल,
1: बचपन से ही हम एक दूसरे के साथ बड़े होते हैं, कभी खिलौने को लेकर लड़ाई, कभी टीवी का रिमोट, कभी खाने की चीजों को लेकर बहस और कभी माता पिता से एक दूसरे की शिकायत। ये छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर खूबसूरत यादें बन जाती हैं।
0: जी हाँ।
1: बचपन में भाई बहन एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समझ आती है कि यही व्यक्ति हमारे जीवन में कितना खास है। कई बार बहन भाई की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है, वो उसकी परेशानियों को बिना ज्यादा पूछे समझ लेती है। वही भाई भी अपनी बहन के लिए ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसके सामने वो बिना झिझक अपने मन की बात रख सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि भाई बहन का रिश्ता केवल भाई मेरी रक्षा करेगा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये रिश्ता हम एक दूसरे का साथ देंगे की भावना पर आधारित होना चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज की हमारी युवा साथी पहले की तुलना में बहुत ज्यादा व्यस्त है।
1: बिल्कुल कशिश,
0: पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं, नौकरी, व्यवसाय और अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ में कई बार परिवार के लिए समय निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कई भाई बहन अलग अलग शहरों या राज्यों में रहने लगे हैं जागृति जी। ऐसे में रक्षाबंधन पर एक दूसरे के घर पहुंच पाना भी हमेशा संभव नहीं हो पाता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज तकनीक ने रिश्तों को जोड़ने के लिए नए रास्ते दिए हैं, जैसे कि वीडियो कॉल पर राखी दिखाना, ऑनलाइन गिफ्ट भेजना, एक दूसरे को फोटो और पुराने वीडियो भेजना, बस कुछ मिनट दिल से बातचीत कर लेना। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें दूर रह रहे भाई बहन को भी करीब महसूस करा सकती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन यहाँ एक बात समझना ये भी जरूरी है दोस्तों कि मोबाइल रिश्ते का विकल्प नहीं बल्कि रिश्ते को बनाए रखने का एक माध्यम है।
1: जी हाँ।
0: अगर हम रोज सोशल मीडिया पर घंटों दूसरों से जुड़े रहें लेकिन अपने भाई बहन से दो मिनट बात करने का समय न निकाले श्रोता साथियों, तो हमें अपने रिश्तों की प्राथमिकताओं पर जरूर विचार करना चाहिए।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज की बहन केवल भाई की राखी बांधने वाली बहन नहीं है, वो अपने सपनों को पूरा करने वाली एक स्वतंत्र सोच रखने वाली युवा भी है।
0: जी जी।
1: वो पढ़ाई कर रही है, करियर बना रही है और अपने फैसले भी ले रही है और अपने भविष्य को लेकर सपने भी देख रही है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे समय में भाई का अपनी बहन के प्रति नजरिया भी बदलना होगा। बहन को केवल सुरक्षा की जरूरत नहीं होती, उसे सम्मान की, विश्वास की और प्रोत्साहन की भी जरूरत होती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, अगर बहन कोई नया कोर्स करना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है या किसी नए क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, तो भाई का काम केवल उसकी चिंता करना नहीं बल्कि उसकी बात समझना और उसका हौसला बढ़ाना भी है। और यही बात बहन पर भी लागू होती है।
0: जी जी।
1: भाई के सपने, उसकी असफलताएं और उसकी उलझने और उसके फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि युवा साथियों से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस प्रकार से बदलते दौर में भाई बहन का रिश्ता बदल चुका है, तो ऐसी ही बातें हम कार्यक्रम में आगे भी जारी रखेंगे।
1: जी हाँ।
0: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,
2: पहली

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हम बात कर रहे थे भाई बहन के रिश्तों को लेकर, तो आपसे कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि रक्षाबंधन के संदर्भ में अक्सर रक्षा शब्द को केवल भाई द्वारा बहन की सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है कशिश।
1: जी हाँ,
0: लेकिन आज के समय में हमें इस सोच को थोड़ा व्यापक बनाने की जरूरत है। रक्षा का अर्थ है श्रोताओं, एक दूसरे की गरिमा, सम्मान, सपनों और भावनाओं की रक्षा करना। अगर बहन किसी परेशानी में है तो भाई उसके साथ खड़ा हो, अगर भाई असफलता से परेशान हो तो बहन उसका हौसला बढ़ाए, अगर दोनों के बीच कोई मतभेद है तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी में हमेशा एक व्यक्ति मजबूत और दूसरा कमजोर नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: परिस्थितियों के अनुसार कभी भाई को बहन के सहारे की जरूरत पड़ सकती है और कभी बहन को भाई के।
1: जी जी,
0: यही तो रिश्ते की खूबसूरती है, साथ हमेशा बराबरी से दिया जाता है।
1: बिल्कुल साथी दोस्तों, नोकझोंक भी रिश्ते का हिस्सा है, यानी कि भाई बहन के बीच छोटी मोटी लड़ाई होना बिल्कुल सामान्य है। जागृति जी, कभी किसी बात पर बहस हो जाती है तो कभी विचार अलग हो जाते हैं दोस्तों, तो कभी एक दूसरे की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जरूरी यह है साथियों कि नाराजगी को रिश्ते से बड़ा न बनने दिया जाए। आज के युवाओं के सामने सोशल मीडिया की दुनिया भी है, जहां छोटी सी बात पर लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं जागृति जी।
0: बिल्कुल,
1: या फिर बातचीत बंद कर देते हैं। ऐसे में भाई बहन के रिश्ते में ऐसा करने के बजाय बातचीत और समझदारी को जगह देना श्रोता साथियों ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बातचीत वर्षों की नाराजगी खत्म कर सकती है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज युवा अपने करियर को लेकर गंभीर है, कोई पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रहा है, कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई नौकरी के लिए घर से दूर है और कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है। ऐसे समय में परिवार का भावनात्मक सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई अपनी बहन से कह सकता है कि तुम अपने सपनों के लिए मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बहन भी भाई से कह सकती है कि असफलता से डरना मत, कोशिश करते रहो। कई बार हमें समाधान नहीं चाहिए होता, बस कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो कह सके मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाई बहन एक दूसरे के लिए वही भरोसेमंद व्यक्ति बन सकते हैं।
1: बिल्कुल साथी श्रोता साथियों, आज हमारे फोन में सैकड़ों कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन जीवन के मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े होने वाले लोग बहुत कम होते हैं जागृति जी।
0: जी हाँ,
1: इसलिए युवाओं को ये समझना होगा कि ऑनलाइन कनेक्शन और वास्तविक रिश्ता एक जैसी चीजें नहीं होती। भाई बहन के रिश्ते को केवल रक्षाबंधन की एक फोटो या सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित न रखें दोस्तों, कभी बिना किसी खास वजह के फोन भी कर लें और पूछें कि कैसी हो, एक दूसरे के काम के बारे में जानें, पुरानी यादों को साझा करें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ खड़े भी रहें, क्योंकि रिश्ते बड़े बड़े शब्दों से नहीं जागृति जी, बल्कि छोटी छोटी कोशिशों से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज भाई और बहन दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए

0: रिश्ते में अधिकार के साथ साथ सम्मान भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, भाई को बहन की पसंद, विचार और फैसलों का सम्मान करना होगा। बहन को भी भाई के विचारों और उसकी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना होगा।
1: जी जी।
0: एक दूसरे पर अपनी इच्छाएं थोपने के बजाय बातचीत करनी होगी, क्योंकि प्यार का अर्थ किसी की जिंदगी को नियंत्रित करना नहीं बल्कि उसे समझना और उसका सम्मान करना भी है।
1: बिल्कुल।
0: राखी का धागा बहुत छोटा होता है लेकिन इसके पीछे जुड़ी भावनाएं बहुत बड़ी होती है। ये धागा हमें याद दिलाता है कि चाहे जिंदगी हमें कितनी भी दूर क्यों न ले जाए, हमारे रिश्तों की जड़ें हमारे अपने लोगों से जुड़ी रहती है।
1: बिल्कुल।
0: रक्षाबंधन हमें ये अवसर देता है श्रोताओं कि हम अपने भाई या बहन से सिर्फ राखी बंधवाने की रस्म न निभाए बल्कि उनसे एक वादा भी करें। हम एक दूसरे के सपनों का सम्मान करें, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दें। मतभेद होंगे तो बातचीत से सुलझाएंगे,
1: बिल्कुल
0: दूरी होगी लेकिन रिश्तों में दूरी नहीं आने देंगे। यही रक्षाबंधन की भावनाओं को आज के समय में और सार्थक बना सकती है।
1: बिल्कुल। युवा साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि जिंदगी की दौड़ में हम कई बार करियर, सफलता और भविष्य के पीछे भागते हुए अपने रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं दोस्तों।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन आपको याद रखना है कि सफलता की खुशी तब और बढ़ जाती है जब उसे बांटने वाला कोई अपना हो। आपकी बहन आपकी दोस्त बन सकती है, आपका भाई आपका साथी बन सकता है। इसके लिए जरूरी है साथियों के रिश्ते में विश्वास, सम्मान, संवाद और अपनापन बना रहे। इस रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने की परंपरा को आप न निभाएं, अपने भाई या बहन को समय दें, उनकी बातें सुने, उनके सपनों के लिए एक दूसरे का हौसला बने। क्योंकि जागृति जी, भाई बहन का रिश्ता किसी एक दिन का रिश्ता नहीं होता, यह बचपन की यादों से शुरू होकर जिंदगी के हर पड़ाव तक साथ चलने वाला रिश्ता होता है।
0: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आज के युवाओं की आवाज कार्यक्रम के माध्यम से, रक्षाबंधन विशेष कार्यक्रम से यही संदेश आपको बताना चाह रहे हैं कि समय बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, रिश्तों को निभाने के तरीके भी बदल रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन सच्चे रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। राखी का धागा हमें सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान, बराबरी और साथ का संदेश देता है। तो साथियों, इस रक्षाबंधन अपने भाई या बहन से एक बार दिल से जरूर कहिए, रिश्ते चाहे जैसे भी हो, दूरी चाहे जितनी हो, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे।
1: बिल्कुल।
0: इसी खूबसूरत संदेश के साथ श्रोता साथियों, हम आज के इस कार्यक्रम से आपसे विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुनवा देते हैं भाई बहनों से जुड़ा ये प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो युवा साथियों बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इस गीत के साथ ही फिर से आप सभी को एक बार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051239।

0: हर दिन निभाएंगे।
1: बहुत सुंदर, और इस बार मैं भाई को सिर्फ उपहार नहीं दूंगी, उसे कहूंगी कि चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो जाए, हम एक दूसरे से बात करना नहीं छोड़ेंगे।
0: बिल्कुल कविता, और यही तो राखी की सच्ची भावना है।
1: मेरा एक बात बताओ, अगर भाई बहन में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाए तो
0: राखी उससे भी बड़ा मौका हो सकती है। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत सालों की दूरी कम कर देती है। जरूरी नहीं है कि हर बार कोई बड़ा उपहार ही दिया जाए। कभी बस इतना कह देना कि अगर मेरी किसी बात से तुम्हें दुख हुआ तो मुझे माफ कर देना, और सामने वाला ये कह दे चलो पुरानी बात छोड़ते हैं, यही तो रिश्ते की खूबसूरती है।
1: सच कहूँ तो त्योहार तभी अच्छा लगता है जब घर में सिर्फ मिठाई नहीं मन में भी मिठास हो।
0: बिल्कुल सही कहा कविता तुमने, और वो देखो वहाँ पर राखी बनाने का सामान पड़ा है, तुम्हें घर पर राखी बनानी है ना?
1: बनानी है
0: तो जाओ जल्दी वो सामान ले लो और फिर घर जाके राखी बना लेना।
1: बिल्कुल, चलो चलते हैं।
0: चलो।
2: तो श्रोता साथियों, आज के हमारे इस छोटे से नाटक से बस एक इतनी सी बात समझ आती है कि रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी बांधने का त्योहार नहीं है, यह श्रोता साथियों उस रिश्ते को याद करने का दिन ही जो बचपन की शरारतों से लेकर जिंदगी में मुश्किल समय तक हमारे साथ चलता है। भाई बहन का रिश्ता कभी प्यार भरी नोकझोंक है, कभी रूठना मनाना, तो श्रोता साथियों कभी बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ जाना। श्रोता साथियों कहना चाहूंगी कि जिंदगी कितनी भी बदल जाए, दूरियां कितनी भी बढ़ जाए, रिश्तों में प्यार और अपनापन बना रहे यही सबसे जरूरी है। इस रक्षाबंधन श्रोता साथियों महंगी राखी या बड़े उपहार से ज्यादा अपने भाई बहन को अपना थोड़ा सा समय दीजिए, एक फोन कीजिए, हाल पूछिए, पुरानी नाराजगी को भूलकर बात कीजिए, क्योंकि श्रोता साथियों कई बार रिश्तों को जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती है, बस एक छोटी सी बात भी काफी होती है, जिससे कि श्रोता साथियों आप बोल सकते हैं उनसे आप कैसे हो, अपना ख्याल रखना, या फिर श्रोता साथियों कोई परेशानी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बातें हम देखते हैं कि हमारे रिश्तों में जो नाराजगी होती है उन्हें कम कर देती है। याद रखिए श्रोता साथियों कि राखी कलाई पर बंधती है लेकिन उसका प्यार हमारे दिल में रहता है। धागा साथियों भले ही छोटा हो लेकिन इसमें छिपा रिश्ता बहुत बड़ा होता है। तो श्रोता साथियों इस रक्षाबंधन राखी बांधिए, मिठाई खिलाइए, खुशियां मनाइए, और साथ ही साथियों अपने रिश्तों को थोड़ा और मजबूत बनाइए, क्योंकि साथियों त्योहार एक दिन आता है लेकिन अपने लोग और उनके साथ का एहसास जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। इसी प्यारे से संदेश के साथ श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारे आपसे जो भी बातें रही वो आप सभी को जरूर पसंद आई होंगी। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: भाई बोनो, घर की निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं रिश्तों में संवाद, परिवार और समाज की मजबूती को लेकर।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, रिश्ते टूटते हमेशा बड़े झगड़ों से नहीं है, कई बार वे छोटी छोटी बातों के अनकहे रह जाने से कमजोर हो जाते हैं। एक परिवार में साथ बैठने वाले लोग अगर एक दूसरे से बात करना बंद कर दे तो घर में लोग तो रहते हैं लेकिन अपनापन कम होने लगता है। वहीं जब संवाद के दरवाजे खुले रहते हैं तो गलतफहमियां दूर होती है, विश्वास बढ़ता है और रिश्तों में मजबूती आती है। इसलिए कहा जा सकता है कि जहां संवाद जीवित है वहां रिश्ते भी जीवंत है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों में संवाद, परिवार और समाज की मजबूती को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, हम कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बात छोटी हो या बड़ी, रिश्तों को बचाने के लिए संवाद का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि संवाद केवल बातचीत नहीं बल्कि दिलों के बीच बना वो पुल है जो परिवार को जोड़ता है और समाज को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि रिश्ते टूटते हमेशा बड़े झगड़ों से नहीं है, कई बार वे छोटी छोटी बातों के अनकहे रह जाने से कमजोर हो जाते हैं। श्रोता साथियों, एक ही परिवार में रहने वाले लोग यदि एक दूसरे से बात करना बंद कर दें तो घर में लोग तो रहते हैं लेकिन अपनापन धीरे धीरे कम होने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके विपरीत जब बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं तो गलतफहमियां दूर होती हैं, विश्वास बढ़ता है और रिश्तों में मजबूती आती है। इसलिए कहा जाता है कि जहां संवाद जीवित रहता है वहां रिश्ते भी जीवित रहते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं और हम अकेले न तो अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त कर सकते हैं और न ही समाज में सार्थक जीवन जी सकते हैं।
1: जी जी।
0: जन्म से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक हमें परिवार, मित्र, पड़ोसी और समाज के अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने ही पड़ते हैं और इन संबंधों को मजबूत बनाने में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रोताओं,
1: बिल्कुल,
0: संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं होता, संवाद का वास्तविक अर्थ है अपनी बात कहना, दूसरों की बात सुनना, भावनाओं को समझना और विचारों का सम्मान करना। जब दो व्यक्ति बिना डर के झिझक के एक दूसरे से अपनी बात साझा करते हैं तो उनके बीच विश्वास पैदा होता है और यही विश्वास किसी भी मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला है। बच्चा सबसे पहले परिवार से बोलता है, व्यवहार करना, दूसरों का सम्मान करना और भावनाओं को समझना सीखता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए परिवार में संवाद का वातावरण होना बहुत जरूरी है। आज व्यस्त जीवन शैली के कारण हम देखते हैं जागृति जी कि परिवार के सदस्यों के पास एक दूसरे के लिए समय कम होता जा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: माता पिता अपने काम में व्यस्त हैं, बच्चे पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों में व्यस्त हैं और खाली समय का बड़ा हिस्सा मोबाइल और इंटरनेट पर बीत जाता है। ऐसे में श्रोता साथियों, परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से दूर हो सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: यदि परिवार में प्रतिदिन कुछ समय एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत की जाए, दिन भर की बातें श्रोता साथियों साझा की जाए और एक दूसरे की समस्याएं सुनी जाए तो रिश्तों में अपनापन बना रहता है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि परिवार में संवाद का बहुत महत्व है और परिवार में बच्चे भी आते हैं। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के साथ संवाद का महत्व विशेष रूप से अधिक है। बच्चों को केवल ये बताना पर्याप्त नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: ये भी जरूरी है कि उनसे पूछा जाए कि वे क्या सोचते हैं, उन्हें किस बात की परेशानी है और उनके मन में कौन से सवाल है। जब बच्चे महसूस करते हैं कि परिवार उनकी बात सुनता है तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपनी परेशानियां छिपाने के बजाय माता पिता या परिवार के किसी विश्वसनीय सदस्य से साझा कर पाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को डांटने के बजाय समझाने की संस्कृति

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने जाना, माता पिता और बच्चों के बीच पीढ़ियों का अंतर किस तरीके से होता है, यही बात करें बुजुर्गों से संवाद अनुभव की विरासत को लेकर।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, परिवार के बुजुर्ग अनुभवों का खजाना होते हैं। उनके जीवन में संघर्ष, सफलता, असफलता और सीखने की अनेक कहानियां होती हैं। जागृति जी, जब नई पीढ़ी उनके साथ बैठती है और उनसे बातचीत करती है तो केवल समय ही नहीं बीतता बल्कि जीवन का अनुभव भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है।
1: बिल्कुल।
0: आज कई परिवारों में बुजुर्गों के पास समय है लेकिन उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं। इस स्थिति में श्रोता साथियों, बदलने की आवश्यकता है।

0: चलिए कुछ समय हम उनके पास बैठें। उनकी बातें सुनना, अपने जीवन की बातें साझा करना रिश्तों को गहरा बनाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, यही हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि संवाद और गलतफहमियां भी हो जाती है। कई रिश्ते किसी बड़ी समस्या के कारण नहीं बल्कि गलतफहमी के कारण कमजोर हो जाते हैं।
0: जी जी।
1: किसी ने कुछ कहा नहीं, दूसरे ने कुछ मान लिया और धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई। ऐसी स्थिति में श्रोता साथियों हमें शांतिपूर्वक बातचीत करनी चाहिए, तभी हमें सच्चाई सामने ला सकते हैं। इसलिए किसी भी बात पर तुरंत निष्कर्ष निकालने की बजाय सामने वाले से पूछना चाहिए। एक सही बातचीत कई दिनों की नाराजगी को समाप्त कर सकती है। परिवार में सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। किसी विषय पर मतभेद होना सामान्य है, लेकिन मतभेद को मनभेद में बदलने से रिश्ते में दरार आ जाती है।
0: बिल्कुल।
1: संवाद हमें सिखाता है श्रोताओं कि हम असहमति के बावजूद एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। किसी की बात से सहमत न होना अलग बात है, लेकिन उसकी भावनाओं का अपमान करना अलग बात है। इसीलिए संवाद करते समय शब्दों के साथ साथ अपने व्यवहार का भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ सुनना भी संवाद है। हम अक्सर सोचते हैं कि संवाद का मतलब अपनी बात कहना है, लेकिन वास्तव में अच्छा संवाद तभी होता है जब हम सामने वाले को ध्यान से सुने। किसी व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने देना, बीच में न रोकना और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना सम्मान का संकेत होता है। कई बार किसी व्यक्ति को समाधान से ज्यादा इस बात की जरूरत होती है श्रोता साथियों कि कोई उसकी बात ध्यान से सुन ले।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी रिश्ते सलाह से नहीं श्रोता साथियों सिर्फ ध्यान से सुने जाने से बच जाते हैं। आज मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने संचार को बहुत आसान बना दिया है। हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से कुछ सेकंड में बात कर सकते हैं, लेकिन जागृति जी विडंबना यह है कि तकनीक ने संपर्क बढ़ाया है जबकि कई बार आमने सामने का संवाद कम कर दिया है। परिवार के लोग एक कमरे में बैठे तो होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है। भोजन की मेज पर भी बातचीत की बजाय स्क्रीन दिखाई देती है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे जागृति जी कि तकनीक का उपयोग गलत नहीं है, लेकिन उसका संतुलित उपयोग जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: परिवार में ऐसा समय निर्धारित किया जा सकता है जब सभी लोग मोबाइल अलग रख कर एक दूसरे से बातचीत करें।
1: जी हाँ अंजलि, जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से डिजिटल युग में संवाद चुनौती बन गया है, यहीं अगर संवाद से मजबूत होता है समाज को लेकर हम बात करें तो साथियों परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। जब परिवारों में संवाद होता है, विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत होती है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। समाज में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं हो सकता। स्वच्छता, जल संरक्षण, शिक्षा, पर्यावरण, सड़क सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव, ये सारे ऐसे विषय पर लोगों को मिलकर चर्चा करनी होगी। जब लोग एक दूसरे की बातें सुनते हैं और सामूहिक रूप से समाधान खोजते हैं तो समाज में सहभागिता की भावना मजबूत होती है।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि जहाँ संवाद होता है वहाँ लोग अपनी समस्याओं को छिपाते नहीं बल्कि साझा करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब समस्या सामने आती है तो समाधान खोजने की संभावनाएं भी बढ़ती है। गांव की बैठक हो या परिवार की चर्चा, विद्यालय हो या सामाजिक संगठन, हर जगह संवाद सहयोग का आधार बन सकता है। एक मजबूत समाज वही है श्रोता साथियों जहां लोग अपनी बात कहने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की बात समझने के लिए भी तैयार हो।
1: बिल्कुल।
0: संवाद में शब्दों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक छोटा सा कठोर शब्द सामने वाले को लंबे समय तक दुखी कर सकता है, जबकि प्यार और सम्मान से कही गई बात मन को छू सकती है। इसलिए श्रोता साथियों बातचीत करते समय क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी समस्या पर चर्चा करते हुए व्यक्ति पर नहीं समस्या पर ध्यान करना चाहिए। तुम हमेशा गलत हो कहने की बजाय इस समस्या को हम मिलकर कैसे ठीक कर सकते हैं कहना संवाद को सकारात्मक दिशा देता है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसलिए हर परिवार और हर समाज में समस्याएं आती है। समस्या होना असामान्य नहीं श्रोताओं, लेकिन समस्या को लेकर बातचीत न करना समस्या को और भी बड़ा बना सकता है। अगर किसी रिश्ते में दूरी महसूस हो रही है तो पहल करने में संकोच नहीं करना चाहिए। पहला कदम छोटा हो सकता है। आप कैसे हैं? क्या बात परेशान कर रही है? या आइए इस बारे में मिलकर बात करते हैं। ये छोटी छोटी बातें कई बार रिश्तों को बचा लेती है। हम देखते हैं अंजलि कि कई बार रिश्तों को बचाने के लिए बड़े प्रयास नहीं बल्कि सही समय पर की गई छोटी सी बातचीत काफी होती है।
0: जी जी।
1: हर व्यक्ति की परिस्थितियां और भावनाएं भी अलग होती है, इसीलिए दोस्तों संवाद करते समय समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है। किसी की परेशानी का मजाक उड़ाना या उसकी भावनाओं को छोटा समझना संवाद को कमजोर कर देता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके विपरीत ही सहानुभूति और संवेदनशीलता रिश्तों को मजबूत करती है। हमें ये सीखना होगा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं लेकिन हर भावनाओं को समझना जरूरी है।
0: जी हाँ जागृति जी, विश्वास अचानक पैदा नहीं होता, यह लगातार किए गए अच्छे व्यवहार, ईमानदारी और संवाद से बनता है।
1: बिल्कुल,
0: जब व्यक्ति जानता है कि वह बिना डर अपनी बात कह सकता है और सामने वाला उसे समझने की कोशिश करेगा तो रिश्ते मजबूत होते हैं। परिवार में विश्वास होगा तो बच्चे अपनी परेशानियां साझा करेंगे, पति पत्नी के बीच विश्वास होगा तो वे समस्याओं पर मिलकर चर्चा करेंगे, समाज में विश्वास होगा तो लोग सामूहिक कार्यों में सहयोग करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवाद विश्वास की नींव तैयार करता है और विश्वास रिश्तों को स्थायित्व देता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, रिश्ते जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। धन संसाधन और सुविधाएं जीवन को आसान बना सकती हैं, लेकिन जागृति जी, सच्चे रिश्ते जीवन को अर्थ देते हैं और अपनापन देते हैं।
1: जी हाँ।
0: इन रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए संवाद सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अंत में यही कहना चाहेंगे कि साथियों, रिश्तों को जोड़ने के लिए बड़े बड़े वादों की नहीं बल्कि सच्चे संवाद की जरूरत होती है। एक बातचीत गलतफहमी मिटा सकती है, एक बातचीत विश्वास जगा सकती है और एक बातचीत टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। इसीलिए संवाद को अपने जीवन की आदत बनाइए, क्योंकि मजबूत परिवार से ही मजबूत समाज और मजबूत समाज से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि बातें कार्यक्रम में श्रोता साथियों से ढेर सारी हो गई है और समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, भाई बहन का साथ निभाएं, मन की हर उलझन दूर भगाएं, मन की बात छुपाएं नहीं, अपनों से कुछ छिपाएं नहीं। भाई बहन बने एक दूजे की ताकत, खुशहाल रहे मन और रिश्तों की आहट।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ श्रोता साथियों, आप सभी को वाकट रेडियो परिवार की ओर से रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM पर, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर,
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल।
0: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। लेकर हाजिर हो चुके हैं श्रोता साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम की जो शुरुआती चंद पंक्तियां रही थी और जो शुभकामनाएं हमने हमारे श्रोता साथियों को दी, उसी से उन्हें पता चल गया होगा कि आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं भाई बहन के रिश्ते के साथ स्वास्थ्य को लेकर। श्रोता साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रिश्ते की जो बचपन की शरारतों से शुरू होकर जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारे साथ चलता है, वो है भाई बहन का रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, कभी भाई की छोटी सी बात पर बहन नाराज हो जाती है, तो कभी बहन की डांट भाई को अच्छी नहीं लगती। कभी दोनों एक दूसरे की शिकायत करते हैं, तो कभी बिना बताए एक दूसरे की परेशानी भी समझ लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब मन उदास हो तो क्या हम अपने भाई या बहन से अपनी बात कह सकते हैं? जब भाई किसी चिंता में हो तो क्या बहन उसके चेहरे से परेशानी पहचान सकती है? जब बहन अपने सपनों, पढ़ाई, नौकरी या परिवार की चिंता में परेशान हो तो क्या भाई उसका हौसला बढ़ा सकता है? और सबसे जरूरी सवाल कि क्या हमारा भाई बहन का रिश्ता सिर्फ त्योहार के प्यार जताने तक सीमित है, या हम एक दूसरे के मानसिक स्वास्थ्य का भी सहारा बन सकते हैं? तो आज हमारा कार्यक्रम का विषय है भाई बहन का प्यार और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे का सहारा कैसे बने।
1: जी हाँ अंजलि जी, इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथी उससे कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
0: बिल्कुल।
1: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं भाई बहन का प्यार और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे का सहारा कैसे बने।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि भाई बहन का रिश्ता हमारे जीवन का सबसे खास रिश्तों में से एक है। यह रिश्ता श्रोता साथियों केवल खून का रिश्ता नहीं होता है, बल्कि इसमें प्यार, विश्वास, अपनापन, दोस्ती, चिंता और एक दूसरे का साथ शामिल होता है। बचपन में श्रोता साथियों भाई बहन एक साथ खेलते, लड़ते, एक दूसरे की शिकायत करते और फिर कुछ समय के बाद साथ बैठकर हंसने लगते हैं। यही छोटी छोटी बातें अंजलि जी हम देखते हैं कि आगे चलकर हमारे जीवन की खूबसूरत यादें बन जाती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, भाई बहन का रिश्ता हमारे जीवन के सबसे पुराने रिश्तों में से एक होता है। बचपन में साथ खेलना, एक दूसरे से चीजें छीनना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना और फिर कुछ ही देर बाद साथ बैठ जाना, ये सब इस रिश्ते की खूबसूरत यादें होती हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। पढ़ाई, रोजगार, शादी, परिवार, आर्थिक परेशानी, भविष्य की चिंता और सामाजिक अपेक्षाएं मन पर असर डाल सकती हैं। ऐसे समय में अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके सामने हम बिना डर अपनी बात कह सकें, तो मन का बोझ काफी कम हो सकता है। भाई या बहन हमेशा समस्या का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन कई बार किसी की बात ध्यान से सुन लेना ही बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब श्रोता साथियों केवल मानसिक बीमारी का न होना ही नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझ सके, तनाव से निपट सके, दूसरों से जुड़ा महसूस करे और जरूरत पड़ने पर मदद मांग सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई बहन का रिश्ता केवल बचपन की याद नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा हुआ है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हम अक्सर स्वास्थ्य की बात शारीरिक स्वास्थ्य से मान लेते हैं। हम पौष्टिक भोजन, व्यायाम, साफ सफाई और बीमारियों से बचाव की बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, स्वास्थ्य का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो मानसिक स्वास्थ्य भी है। मन खुश हो, शांत हो और साथ ही श्रोता साथियों व्यक्ति अपने जीवन की परेशानियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है, तो हम देखते हैं कि उसके जीवन का तनाव, अकेलापन, चिंता और मन की बातें हैं वो किसी से साझा करे तो उसके अंदर की परेशानी ही वो काफी हद तक कम हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों परिवार और खासकर भाई बहन एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बन सकते हैं। एक छोटा सा प्यार भरा शब्द, ध्यान से सुनी गई बात, मुश्किल समय में दिया गया साथ, यही एहसास दिलाता है श्रोता साथियों कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी के मन को बहुत बड़ी राहत दे सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, भाई बहन का प्यार केवल राखी बांधने, त्योहार मनाने या एक दूसरे को उपहार देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्यार का असली अर्थ है एक दूसरे की बात सुनना, भावनाओं का मजाक न उड़ाना, परेशानी में साथ खड़ा होना, असफलता के समय हिम्मत देना, तुलना के बजाय प्रोत्साहित करना, गलती होने पर अपमान नहीं समझदारी से बात करना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ या परिवार के किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लेने के लिए कहना। कई बार हम अपने भाई या बहन को देखकर सोच लेते हैं कि वह तो मजबूत है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, लेकिन याद रखिए कि जो व्यक्ति बाहर से मजबूत दिखाई देता है उसके मन में परेशानी भी हो सकती है। इसलिए कभी कभी सिर्फ इतना पूछना भी जरूरी है कि तुम सच में ठीक हो, और जब वह जवाब दे तो उसकी पूरी बात सुनना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्यार का मतलब केवल मैं तेरे साथ हूँ कहना नहीं होता है, प्यार का मतलब होता है पूरे तरीके से साथ निभाना।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दे।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, अब यही बात आती है मानसिक परेशानी को पहचानना क्यों जरूरी है। श्रोता साथियों, मानसिक परेशानी हमेशा सीधे शब्दों में दिखाई नहीं देती। कई बार व्यक्ति कहता ही नहीं कि वह परेशान है, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगता है। जिससे पहले बहुत बातचीत करने वाला व्यक्ति अचानक चुप रहने लगे, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति लगातार उदास दिखाई दे, पढ़ाई या काम में मन न लगे, छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आने लगे, लोगों से मिलने जुलने से बचने लगे, बार बार खुद को असफल या बेकार समझने लगे, नींद या रोजमर्रा की दिनचर्या में बड़ा बदलाव दिखाई दे, भविष्य को लेकर बहुत अधिक निराशा व्यक्त करे, अपने परेशानियों को किसी से साझा करना बंद कर दे। श्रोता साथियों, इनमें से किसी एक संकेत का मतलब यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन अगर ऐसे बदलाव लगातार बने रहे और व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने लगे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में भाई या बहन कह सकते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए हूँ।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, हमारे समाज में अक्सर भाई बहनों की तुलना की जाती है। देखो, तुम्हारा भाई कितना अच्छा पढ़ता है, तुम्हारी बहन ने तो नौकरी कर ली है, तुम अभी तक क्या कर रहे हो, उसके इतने अच्छे नंबर आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं। ऐसी बातें कभी कभी सामान्य लग सकती हैं श्रोता साथियों, लेकिन कई बार तुलना व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए भाई बहन को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। अगर बहन किसी परीक्षा में असफल हो जाए तो भाई यह कह सकता है कि एक परीक्षा तुम्हारी पूरी क्षमता तय नहीं करती, अगली बार हम मिलकर तैयारी करेंगे।
1: जी हाँ।
0: अगर भाई नौकरी में असफल हो जाए तो बहन कह सकती है कि अभी सफलता नहीं मिली है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सफल नहीं हो सकते। ऐसे छोटे छोटे शब्द मन में बहुत बड़ा विश्वास पैदा कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि अकेलेपन से बचाने में भाई बहन की क्या भूमिका होती है इसकी, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि अकेलापन मन को बहुत प्रभावित करता है।
0: बिल्कुल।
1: व्यक्ति लोगों के बीच रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस कर सकता है। भाई बहन एक दूसरे के साथ समय बिताकर इस भावनाओं को कम कर सकते हैं। साथ बैठकर भोजन करना, बातचीत करना, टहलना, घर के कामों में सहयोग करना, पुराने किस्सों को याद करना, यहाँ श्रोता साथियों किसी सामान्य गतिविधि में साथ शामिल होकर रिश्तों को मजबूत करना, इसके लिए श्रोता साथियों हमेशा बहुत समय की जरूरत नहीं होती है। रोज कुछ मिनट निकालकर आप एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जिससे श्रोता साथियों हम देखते हैं कि अकेलापन है वो काफी हद तक कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। वागड़ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार और समुदाय का आपसी जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है श्रोता साथियों। यहाँ भाई बहन केवल एक ही घर के सदस्य नहीं होते, बल्कि कई बार परिवार की जिम्मेदारी और कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का मजबूत सहारा बनते हैं। खेती किसानी की चिंता हो, रोजगार की समस्या हो, बच्चों की पढ़ाई हो, घर की आर्थिक स्थिति हो, या भविष्य को लेकर कोई निर्णय हो, इन परिस्थितियों का असर मन पर भी पड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में मनीषा, परिवार के भीतर बातचीत का माहौल होना बहुत जरूरी है। अगर भाई शहर में काम करता है और बहन गांव में रहती है तो दूरी के बावजूद फोन पर बातचीत की जा सकती है। सिर्फ यह पूछना कि घर में सब ठीक है के बजाय कभी पूछें कि तुम कैसे महसूस कर रही हो, इन दिनों तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कोई परेशानी है तो मुझसे कह सकती हो। यह बातचीत श्रोता साथियों रिश्तों को मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ आज मोबाइल फोन ने दूर रहने वाले भाई बहनों को भी एक दूसरे के करीब रहने का अवसर दिया है। अगर भाई दूसरे शहर में काम करता है, बहन की शादी दूसरे गांव या शहर हो गई है, या पढ़ाई के कारण दोनों अलग अलग जगह रहते हैं, तो नियमित फोन या वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हर बातचीत लंबी हो या जरूरी नहीं है, कभी दो मिनट की बातचीत भी काफी होती है। आज दिन कैसा रहा, खाना खाया, काम का तनाव तो नहीं, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, ऐसी छोटी बातचीत व्यक्ति को यह एहसास कराती है कि उसके अपने लोग उसके साथ हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही बात करें कि एक स्वस्थ परिवार की पहचान क्या होती है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि स्वस्थ परिवार वह नहीं होता जहां कभी झगड़े नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: स्वस्थ परिवार वह होता है जहाँ झगड़े होने के बाद भी श्रोता साथियों एक दूसरे के अंदर बातचीत करने का हौसला हो, गलती होने पर माफी मांगी जाए और परेशानियां होने पर एक दूसरे का साथ दिया जाए।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, परिवार में भावनात्मक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि घर का कोई भी उसकी बात सुनेगा, उसकी जरूरत पड़ने पर साथ खड़ा रहेगा, तो उसके अंदर अंजलि जी हम देखते हैं कि आत्मविश्वास ही वो बढ़ जाता है। भाई बहन इस भावनात्मक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए श्रोता साथियों महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें ये सब करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले तो हमें अपने घर वालों को समय देना है, एक दूसरे की बातों को सुनना है। श्रोता साथियों मजाक में कही गई बातों को हमें दिल पर नहीं लेना है। तुलना करने से बची मुश्किल समय में श्रोता साथियों एक दूसरे के साथ खड़े रहें और जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद करें।
0: बिल्कुल मनीषा, मानसिक स्वास्थ्य में सम्मान और आत्मनिर्भरता की बड़ी भूमिका होती है। अगर बहन पढ़ना चाहती है, कोई कौशल सीखना चाहती है, नौकरी करना चाहती है या अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो भाई उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसका हौसला बढ़ा सकता है। इस तरह भाई के सामने रोजगार, आर्थिक जिम्मेदारी या भविष्य की चिंता हो सकती है। बहन उसकी परेशानियों को समझ सकती है और जरूरत पड़ने पर भावनात्मक समर्थन दे सकती है।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि श्रोता साथियों सहारा देने का मतलब यह नहीं है कि हर समस्या का समाधान हमारे पास होना चाहिए। कई बार हमारा साथ ही सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है लोगों का डर। कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी परेशानी किसी को बता दी तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। यही भाई बहन का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां व्यक्ति यह महसूस करे कि मैं अपनी बात कह सकता हूं, मेरी बात का मजाक नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई भाई या बहन मानसिक तनाव में है तो उसके बाद दूसरों के सामने मजाक के रूप में नहीं बतानी चाहिए। भरोसा टूटने से व्यक्ति आगे अपनी परेशानी साझा करने से डर सकता है, इसलिए एक दूसरे की निजी बातों का सम्मान करना भी प्यार का हिस्सा होता है।
1: जी
0: अंत में श्रोता साथियों आपको यही कहना चाहेंगे कि जीवन में हर व्यक्ति के सामने ऐसे दिन आते हैं जब वह खुद को कमजोर महसूस करता है। ऐसे समय में कोई ऐसा अपना व्यक्ति जो बिना निर्णय सुनाए हमारी बात सुन सके, हमारे आत्मविश्वास को वापस ला सके। भाई बहन एक दूसरे की हर समस्या खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे को यह एहसास जरूर दिला सकते हैं कि मुश्किल समय में वे अकेले नहीं हैं। याद रखिए कि मजबूत रिश्ता वह नहीं जिसमें कभी झगड़ा न हो, मजबूत रिश्ता वह है जिसमें झगड़े के बाद भी अपनापन बना रहे, दूरी के बावजूद बातचीत बनी रहे और परेशानी के समय एक दूसरे का हाथ थामने की हिम्मत बनी रहे। तो आज अपने भाई या बहन को एक फोन जरूर कीजिए और उनसे पूछिए कि तुम कैसे हो, और जवाब सिर्फ सुनिए नहीं समझने की कोशिश भी कीजिए। क्योंकि कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी दवा कोई बड़ी चीज नहीं होती, बस एक अपना इंसान, एक सच्ची बातचीत और ये विश्वास कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही भाई बहन के प्यार की असली ताकत है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को। नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमर वावर अमर हित्ता भाई बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
2: राम राम।
0: होवे भाई बोनो आप सब हमले रिया हो अपड़ू सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थी गया हूँ कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाथे। मनीषा बोन आज अपना कार्यक्रम में भाई बोनों तक की बातचीत नु विषय है कि अपने जो गाँव है ये सामुदायिक जो खेल है ये कम थाता जा रहे हैं आने हूँ समस्या है ने समाधान ना हूँ उपाय थे सके। भाई बोनो आपने हूँ याद है कि पहले ने टाइम में हास ना टाइम में अपना जो गाँव हता अना मैदान में सोर ने युवा जे है एना आवाजे जे है ये आपती हती कबड्डी खो खो गिल्ली डंडा सितोलिया रस्सी कस्सी ने घना एवं स्थानीय खेल हता जे गाँव ना जीवन तकी जुड़ता कहता। खेल केवल भाई बोनो मनोरंजन न तर बल्कि दोस्ती अनुशासन सहयोग ने स्वास्थ्य नु माध्यम भी हतु। पण अवड़े ना टाइम में मनीषा बोन आपणे देखी रहो कि गाँव में भी आ दृश्य जे है ई धीरे धीरे बदलाई रू है। मैदान खाली है ने मोबाइल नी स्क्रीन जे है ई भरी है आखिरकार आवो केम थई रू है ने अणि स्थिति में हर ते आपणे ने बदलाव करवो होगा ई आज आपणे कार्यक्रम ने माध्यम थकी जाणवा वारा हो।
0: હવે અંજલી બોન તો આના વિશે માટે આપણે ભાઈ બોન ખતી ઘણા કાને વાતે રેંગા અબ્રહામળા ગીત ને મોરે કર આપણી વાતી।
1: હવે તો ભાઈ બોનો આપ હમર દરેજુ આપણો રેડિયો આપણી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માટે।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बना वंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।